जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी ने गुरमत विद्यालय के विद्यार्थियों पासों बड़े ही प्रेम दे नाल आरती आरती दे कीर्तन सरवण कीते हन। बच्चियां दा, इन्हां दे माता पिता, इन्हां दे उस्तादां दा, समूह संगत प्रबंध सेवादारां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु जी चढ़दी कला नाल पंथ कौम दी सेवा दे बल बख्शिश करन जी। संगत जी, गुरु घर विखे आने वाले जो समागम ने, 1 अगस्त दिन शनिवार नूं सलाना नगर कीर्तन मेरी पीरी दिवस नूं समर्पित होवेगा। 16 अते 17 जुलाई नूं कथा दरबार होणगे। 18 तों लैके 22 तक ढाडी

0: की नहीं सुनना। गुरु अमरदास महाराज जी की पावन बाणी आप पढ़ते हैं, ए सरवण हो मेरे हो सच सुनने नो पठाए, सच सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। कहिंदे शरीर दे नाल कान लगे ने, ए सुनन वास्ते लाए ने, पर सुनना की है सच दी बाणी, सच सुनना कन्ना दे नाल। पातशाह कहिंदे ने नाल ही भी जे आले दुआले सच ना होवे फिर अरदास करनी है भी वाहिगुरु एदां दा माहौल ना बने। की नहीं सुनना, मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए, ऐ मेरे मोहन मोह लैण वाले परिपूर्ण परमात्मा मेरे कन्ना दे विच सुनन वास्ते आ चीज ना पवे। केड़ी? साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए। साकत दे शब्द गुरु नालों टुटे हुए दे शब्द, भैड़े गीत गंदे बोल कहिंदे मेरे कन्ना विच सुनन नूं ना पैण। साकत गुरु नालों टुटा है पता है, ते जे टुटा है ते उन्हें भैड़े बचन ही मुंह चो कढ़ने ने जेड़े तेनू भी गुरु नालों तोड़नगे। भगत कबीर साहब ने ते आख्या है, कबीर साकत संग न कीजी है दूर है जाई है भाग, बासन कारो परसी है तो कछ लागे दाग। तेनू पता गुरु नालों टुटा होया बंदा तेरे सामने आ रहा, साकत बिरती दा बंदा आ रहा है, ये गुरु नालों तोड़न वाले बचन मुंह चो कढ़ेगा। कहिंदे इहनू वेखदिआं सारी तू परे हो जा, राह छड्ड दे अपना भज जा, इहदा परछावां वी तेरे ते ना पवे। साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए। भैड़ा संगीत गंदे गीत किसे दी निंदिआ चुगली ए मेरे कन्नां विच ना पैण, जे ए पैणगे ते मेरी गुरु नालों नेड़ता घटेगी। सुनना है सच्ची बाणी नूं, सरवणा भगती अंदर जुड़ के बैठे हो, सुन रहे सी गुरु इतिहास दी कथा, सुन रहे हो ढाडी वारा गुरु का जस जोधिया दी कहानियां। आओ मन बिरती एकाग्र करिए, कोई रसना वांझी ना रहे, सारी संगत हाथ जोड़ के सीफ चुका के मन बिरती एकाग्र करके आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर गुरु की संगत बेंत अरदासा बेनतियां कर रही है, बेंत माया हाजिर कर रहे हो, गुरु कृपा करे सतगुरु जी हाजरियां दर प्रवान कर लैन। समुचे रूप अंदर एक बार कह दियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। परसों दे दीवाना विच आप जी ने सरवण किया, क्योंकि शनिवार नूं नाम सिमरन गुरमुख प्यारे वालों करवाया जांदा है। जिथो गल आपां छड्डी सी आपां उथो आरंभ करिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं चढ़ के आया, सरहिंद दे गवर्नर वजीर खान नूं चिट्ठी लिख दित्ती भी खालसा आ गया ही, तैयारी कर लै। ए ना कवी कि तेनू तैयारी दा मौका नहीं दिता, तेनू समा दिता जांदा है, तैयारी कर, मैदाने जंग अंदर तेरे कीते हुए कुकर्मा दा हिसाब तेरे कोलों लिया जावेगा। जहाद दा नारा दिता गया, काजी मलाणिया ने ढंडोरा दे के आखिया इस्लाम खतरे विच है। लड़ाई हमेशा राजसी हुंदी है, लेकिन इनू चातर लोग धर्म का ना देंदे ने कि धर्म खतरे विच है। कहिंदे ढंडोरा दिता, हजारा गाजी मैदान च नितरे, मलेर कोटले वाली वड्डी ताकत शेर मुहम्मद खां जिन्हें हादा नारा मारिया सी, जिन्हें आख्या सी वजीर खां साहबजादे छोटी उम्र इस्लाम किते भी यह गल नहीं करदा कि इन्हां दुध चुंगदे मासूम लाला उत्ते कोई फतवा लागू किया जाए। तौरेत जंबूर अंजील कुरान इन्हां इस्लाम दे पवित्र ग्रंथां दे विच किते भी यह गल नहीं लिखी बजुर्ग उत्ते दुध चुंगदे मासूम बच्चे उत्ते कोई सजा लागू कीती जावे। इन्हें हादा नारा मारिया, ये पाप है छड़ दे इन्हां नूं। सुचानंद ने आख्या सी सूला जमदियां दे मूंह तिखे ने, ये वड्डे होके डंग मारनगे सिरियां फेक के रख दिओ। वड्डी ताकत है शेर मुहम्मद खां मलेरकोटले वाले दी। एक पासे गाजियां नूं खड़ा कीता गया, एक पासे मलेर कोटले वाले ओदे तो अगले बन्ने रह के ते जंबूर के बीड़े गए। फिर कहिंदे ने के 1000 हाथियां दी वड्डी कंध खड़ी कीती गई। हाथी आम हाथी नहीं, जेड़े आम पंजाब दे पिंडां विच बाजारां विच घूमदे नजर आउंदे ने, जंगी हाथी, ओ हाथी जिस हाथी दी चर्चा सुन के दुनी चंद मजीठे वाला मसंद आनंदपुर दा किला छड के दौड़ गया सी। ਵੀ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 1000 ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਜਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ 22 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਡਟ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਗਉਤੀਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੇਜੇ ਭਾਲੇ ਬਰਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡਟਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦਣਦਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

फिर उते सतगुरां ने एक वड्डा कार्ज कीता, मल अखाड़े आरंभ कीते तां कि जिथे गुरसिख ने संगत जी गुरबाणी नूं पढ़ना सुनना समझना है उस

पर पढ़ के आए हां, पर पाठ अंतर भेद है। मन मान मारे धात मर जाए, उथे पाठ अंतर भेद है, मारे है इथे मरै पाठ। सो सारा ये शब्द आप पिछे पढ़िया है, पर पाठ अंतर भेद है।

0: मन असाद ऐदां उचारण करना, मन असाद साधे जन कोई भारे पाठ करने हां जी।
1: आचर चरै ता निर्मल होई,
0: आचर पाठ भी पोला ही करना, आचार नहीं कहना, आचर चरै ता निर्मल होई।

0: हर दरगह पावह, फिर जन्म ना आवह। हर हर हर जोत समाई, जाप मन नाम हरि हो सर्ब सुखी। हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Sari.
0: Tana, Sari.

0: सीह सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाह हर जीव तेरो नाव।
1: चौरासी सिद्ध बुद्ध इथे जाके रुकना साधु संगत जी, चौरासी कह के रुक नहीं जाना। चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मोन जन, मोन जन पाठ भी संबंधक रूप दे विच करना ते जन पद ते आन के विश्राम लाउणा, राह च विश्राम वाधू नहीं लाउणा क्योंकि यह साधु संगत जी फिर अर्थ बदलणगे। सो चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मोन जन सब चाह है हर जियो तेरो नाव।
0: गुर प्रसाद को विरला पावै जिनका लिलाड लिखिया तुर पा
1: पाव। सच्चे पातशाह महाराज स्पष्ट रूप दे विच कहिंदे लोग देवी देवत्यां दी पूजा करदे हन, सिद्धां दी पूजा भी कीती जांदी है। गरीब नवाज कहिंदे 84 दे 84 ही सिद्ध ते 33 करोड़ देवी देवते ते मुनि जन जिन्ने भी हन सारे दे सारे महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी सब चाह है हर जियो तेरो नाव। सारे वाहिगुरु तेरे नाम नूं तरसदे हन। सो साध संगत जी सानू गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके नाम दी बख्शिश कीती है, असीं वड्डे भागां वाले हां। सो साध संगत जी जिन्हां दी असीं पूजा करदे हां ओह उस चीज नूं तरले लै रहे जिहड़ी सानू प्राप्त हो गई है। सो सच्चे पातशाह महाराज सानू वधिया वड्डी बख्शिश करदे हन। गुर प्रसाद को विरला पावै जैन कौ लिलाट लेख तुर पाओ। महाराज कहिंदे गुरु दी कृपा दे नाल कोई विरले जाने नूं ऐसी नाम दी प्राप्ति अंतरीव अंदरों हिरदे चों जड़ी नाम दी बख्शिश हो जांदी है, जिदे मत्थे ते लिलाट ते लिखिया हुंदा उह देवी देवतियां नालों ही वड्डा, उह सारिआं नालों उच्चा। सो साध संगत जी किसे भी देवी देवते दी पूजा दी प्रथाए वाहिगुरु कोलों नाम मंगीए। महाराज सच्चे पातशाह जीआं दी पावन बाणी दे विच साध संगत दी इह वचन आउंदे हन, इस देही कौ सिमरह देव। इह मनुखा देही नूं तरले लैंदे फिरदे ने देवते, सानू वाहिगुरु दी आराधना ही केवल करन दी जरूरत है।

0: मिटै ना भूखा।
1: उद्दम करै सुवान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी, पर गृह जोह ना चुकै।

0: जन्म जन्म के किल विख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत, साध संग इन दुख ते निकस्यो, नानक एक परीत। तनासरी महला पंजवा। पानी पक्खा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई।
1: पानी पाठ भी कसके, पक्खा पाठ भी कसके, पानी पक्खा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई।

0: काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रेन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया
1: पुनः पुनः पाठ उचारण पोले ही करने पुन्ने पुन्ने नहीं कहना कई पुन्ने पुन्ने कर जांदे आ जदों पुन्ने पुन्ने कहांगे ते पुन्न दा अर्थ साध संगत दी पुन्न हुंदा ते पुनः दा अर्थ हुंदा दोबारा दोबारा फेर फेर सो इस करके पोला उचारण करना पुनः पुनः बलिहारिया।

आनंद आन संजम किछ ना सूझे यह जतन काट काल काल रहाओ। आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय जन्म।

के घर मंगल वाजे नित वाजे अपना खसम निवाजे आस थिर अराह डोलह मात कबहू गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भू मंडल।

0: हृदय कमल चरण अवर आस काछ पटल ना कीजै।
1: काछ पाठ ते पटल पाठ दोवें भोले पटल नहीं कहना, काछ पटल ना कीजै।
0: सोई

0: सगल है फीके, एक है गोबिंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तहन अपन थाप्यो, हार जाप ना निमख जाप्यो, अर्थ द्राब देख काछ संग नाही चलना।
1: साध संग जी चंदन चोआ रास इथे जमकला के भोग करत अनेक, इथे विश्राम बिखिया बेकार देख, इथे जमक सगल है फीके, इथे दूजा विश्राम एक है गोबिंद को नाम नीको, इथे फिर ठमक कहत है साध जन है, ते फिर रुकना लमेरी पंक्ति है। तो विश्राम दो हन, दो जमका एक ठमक, तो इस तरह उचारण करना। दो दोरे आप संगत दे चरणा च बेनती है, फिर ध्यान दिता जावे। चंदन चोआ रास इथे जमक, भोग करत अनेक है इथे विश्राम, बिखिया बेकार देख इथे जमक, सगल है फीके इथे दूजा विश्राम, फिर एक है ते थोड़ा जा ठहरा ला के एक है गोबिंद को नाम नीको, इथे फिर ठमक कहत है इथे ठहरा थोड़ा जा ला के साध जन।
0: जा को रे करम भला तिन ओट गही संत पल्ला,
1: पल्ला पाठ कसके करना ते भला पाठ पुला। जा को रे करम भला तिन ओट गही संत पल्ला।

सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण का माण नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति का कोई माण नहीं, तेनू अपने स्वप्न का सुंदरता का कोई माण नहीं। प्राचीन उपनिषदा के ऋषियों ने परमात्मा के ये तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित ओ चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाओ ही चाओ है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, अमान है, तेनू कोई माण नहीं है। किसी भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा, अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा। और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक हैं फिर एक हैं। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत देते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक दी व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी दा, पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
नहीं ते सदा ही नापाक गंदगी दी ढेर गलाजत नाल भरे आया मैला। महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ते खुद भी अपवित्र, एदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, एदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे च भी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, होर तरह तरह की सेवा दे जुटे होया है, ना एक दी समझ, ना एक नाल जुड़े है। तो मैं अर्ज करा इना सारे धार्मिक कर्मा दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे उस कर्म नु निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलिन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा, ये किवें पाक होवेगा, ये किस तरह पवित्र होवेगा। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वत बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शने, एक नू समझे, एक नल जुड़े, एक नू जाने ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया के वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जिन्हों के बोल आरंभ आते हैं एक तो, बाणी आरंभ आती है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, इति पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत आउणगे, पर सतगुरु का फैसला है बाणी बिरलो विचार सी। एक कोई बिरला विचारेगा और बिरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया, हाथ बदल गए, पैर बदल गए, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया, सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदिया मनुख का संसार बदल जाता है, सोचनी दे बदलदिया मनुख का आचरण बदल जाता है, चिंतन दे बदलदिया मनुख का सब कुछ बदल जाता है, सारे का सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदिया। और किधरे बहुगिणती दे मनुखा दे विचार बदल जान, किसे नू कहिंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जांदा है, युग बदल जांदा है।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। एदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीश निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीश निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इस नूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चढ़ी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और है भगत कबीर कहंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपर ले रखियो गुमान है कि तेनु हड्डियां दा माण है, तेनु मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। जैसे असी वख वख रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नूं नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानूं मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वख वख दे दिता। किसे नूं गोरा, किसे नूं काला, किसे नूं सांवरा, किसे नूं लाल, किसे नूं जर्दी मायल, किसे नूं गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंके उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है।
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े होया मांस, और मांस दते लिपटी हुई मिंज, और मिंज दते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार सोचनी चितवनी ते आहंग, इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित आहंग। इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने, चतुष्टा अंतःकरण। चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जब सोचता है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध ते जद मनुख किसे नू याद करता है या याद दिच बैठा है, चिंतन दिच बैठा है, वो ही मन बन गया चित्त। मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसे ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते मान। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है, इत महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभता दा मान। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, मान तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा है उन्हां कोल, किस्ते उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो ताण मांगो धन लखमी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, उह ते मरण तो पहले मर गया, उह ते कबर ते चला गया, उह ते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, उह मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहिंदे उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किस दा? जोर हुण प्रभु दा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं इस करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदिआं जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा हुंदा है मनुख दे विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां विच मनुख दी सोचनी विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं सोचनी विच की है और पढ़ो अपनियां यादां नूं यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना, बहुत कुछ पढ़ लेना, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है मन नो समझण की कोशिश पिया करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी इत्थे तक कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दिया गहराइयां नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, उही भुल विष्णु करदा है, उही भुल शंकर करदा है, उही भुल इंद्र करदा है, उही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेणगे, किवें कर लेणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसे होर ने नहीं ठगया, मन ने ठग लिया बिशनु नो, मन ने ठग लिया शिव जी नो, मन ने ठग लिया इंद्र नो,
जो आम साधारण मनुख भूल कर देने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है। इंद्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया सहस शरीर चहन भग उए तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है मनुख दी सोचनी विच की है मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है मनुख दे विचारां विच काम है मनुख दे विचारां विच लोभ है मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है इसकी अपनी कोई होंद नहीं है ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह लोभ दी छाया है मोह हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध मोह दी छाया है क्रोध काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा गुस्सा आउंदा। जिड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिड़ा हंकार नू पट्ठे पा दे प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं तुसी ना हो ते सेवा हो नहीं सकती तुसी ना हो ते गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते ने कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा अहंकार फिजूल अहंकार फोका अहंकार। तो जिहड़ा अहंकार नु पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है चंगा लगता है प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है अपनी कोई बुनियाद नहीं है अपनी कोई होंद नहीं है ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझणा है थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है ये भी मैं अर्ज कर दें। और अंतरमुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी ते अंतरमुखी ओही हो सकेगा जो सुनदा है ते सुनना ही ते कठिन है बहुत कठिन है बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने मंदिर ने गुरुद्वारे ने साधना दा थोड़ा थोड़ा अंतर है मंजिल इको ही है ठिकाणा इको है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसे देवते अवतार दी मूर्ति दे सारी साधना अखां ते खड़ीए वेखण ते खड़ीए दर्शन ते खड़ीए दर्शन करने ने वेखना अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां सारी साधना दर्शना ते खड़ीए। अज एक मंदिर दी कोठड़ी दे भगवान नूं वेखीए फिर बाहर वेखीए फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे साधना है वेखना है दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज
ساری سادنا پڑھن تے کھڑی ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں تھوڑا جیا پڑھنا یہ واسطے اکاگرتا چاہیے ہے، تھوڑی جی سکھ جاندے نے گردوارے سنن لئی گرو کا شبد، ساری سادنا کنا تے کھڑی ہے، سنن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں پڑھنا اوکھا ہے اور پڑھن نالوں سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، اس چکر چ نہ پینا کہ اسی اتنے سارے بیٹھے ہاں سارے سن رہے ہیں، پتہ ہی نہیں دو چاراں تو زیادہ کوئی نہیں سن رہا، سب اپنے وچاراں نو سن رہے ہیں، سب اپنی سوچنی نو سن رہے ہیں، سب اپنی یاداں چ مرو، اندر جو پھرنے چل رہے ہیں سب انہاں نال جڑے ہیں، کٹھن ہے، اگر کوئی سنے تو صاحب کہتے ہیں نانک بھگتاں سدا وگار، سنیے دکھ پاپ کا ناش، سندیاں ہی دکھ ناش ہو جاندے، سندیاں ہی پاپ ناش ہو جاندے، سندیاں ہی گرو کا شبد اندر پرویش کرے گا، سندیاں ہی گرو دی وچار اندر پرویش کرے گی، اندروں ہنکار نکلے گا، اندروں دکھ نکلن گے، اندروں سنتاپ نکلن گے، سننا ہی تے اوکھا ہے، اور سن اوہی سکے گا جس دا پورا دھیان اکاگر ہوے، ادھر بھٹکتا پیا ہے، ادھر بھٹکتا پیا ہے، ادھر ویکھ رہے ہے، ادھر ویکھ رہے ہے، تو سپشت ہے یہ دھیان بھی بھٹک رہا ہے، انہیں کی سننا ہے، سنن لئی دھیان دی پوری اکاگرتا چاہی دی ہے، ایک منک اچھی اچھی بول رہا ہوں دا ہے، دوسرا سن رہا ہوں دا ہے، تے سنن والا اچن چیت کہہ دیندا مترا اے گل پھر آنکھ میں نہیں سنی، تو کیوں نہیں سنی، جد بولن والا اتنی اچھی اچھی بول رہا ہے تو کہندا میرا دھیان کسے ہور پاسے چلا گیا، بنا دھیان دی اکاگرتا تو سننا کٹھن ہے، اور بنا سنیا گرو دے شبد دا اندر پرویش ہونا کٹھن ہے، اور شبد دے اندر دے پرویش ہوئے بنا دکھاں دا باہر نکلنا بھی کٹھن ہے، دکھ تاں ہی باہر نکلن گے، سنتاپ باہر تاں ہی نکلن گے جے شبد اندر پرویش کرے گا، نانک بھگتاں سدا وگار، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سن کے ہی منک سدھ بن جاندا ہے، پیر بن جاندا ہے، ناتھ بن جاندا ہے، گینی بن جاندا ہے، دانی بن جاندا ہے، اتنا پاون ہو جاندا ہے کہ اٹھاٹھ تیرتھ بھی اس تو صدقے کیتے جا سکتے ہیں، سنیے اڑسٹھ کا اشنان، اتنا پاون ہو جاندا ہے، وہ تو اتنا پوتر ہو جاندا ہے جی کدھر سنے، بھوجن دی برکی منہ دے راہی اندر پرویش کر دی ہے، وہ پچ کے منج بن دیے، خون بن دیے، ماس بن دیے، شریر دی شکتی بن دیے، توانائی بن دیے، اندریاں دا بل بن دیے، گرو دا شبد کنا دے راہی اندر پرویش کرتا ہے، یہی سمادھی بنتا ہے، یہی آنند بنتا ہے، یہی دیوی گن بنتا ہے، یہی پرم شکتی بنتا ہے، یہی روحانی طاقت بنتا ہے، پر شبد تے کنا دے راہی اندر پرویش کرے گا، اور ادوں پرویش کرے گا جد کوئی سنے گا، اور سنے گا وہی جس دا دھیان پورا اکاگر، نہیں تے کون سنتا ہے، شوقیا لوکی اپنے گھر دے وچ بھی اکھنڈ پاٹھ رکھا لیندے نے، پر جس کمرے دے وچ رکھاندے نے اتھے وڑنا ہی بھل جاندے نے، کدھر سننا نہ پے جائے، کون سنتا ہے، کٹھن ہے، منک پتر نو سن سکدا ہے، متر نو سن سکدا ہے، پتنی نو سن سکدا ہے، پتی نو سن سکدا ہے، گرو نو سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، کارن گرو دی گل، گرو دی وچار سڈے وچاراں نال تال مل نہیں کھاندی، سڈے وچاراں چ کام، گرو دے وچاراں چ رام، سڈے وچاراں چ کرودھ، گرو دے وچاراں چ دیا، سڈے وچاراں چ ہنکار، گرو دے وچاراں چ نرنکار، نرمانتا ونمرتا تال مل نہیں بیٹھتا، واجے دی سر ایک پاسے جائے، تبلے دی سر ایک پاسے جائے، کدن تال مل نہیں بیٹھے، تال میل نہیں بیٹھے، تال تبلا سر تال دوہاں دا میل تے بیٹھنا چاہیے، سر کسے پاسے جا رہی ہے، تال کسے پاسے جا رہی ہے، گرو دے وچار کچھ اور، سڈے وچار کچھ اور، تال میل نہیں بیٹھتے، اور کہنے نے جتھے تال میل بیٹھ جائے رس بنتا بھی اتھے ہی ہے، ورنہ رس نہیں بنتا، اور کسے دن کیرتن سندیا کسے نو رس آ گیا ہے، تال میل بیٹھ گیا، اول تے میں دیکھے ہے کیرتن دا رس تے کسے نو ورلے نو ہی آمدہ ہے، لوگ سوراں دے آوازاں دے اگلے دے رنگ روپے چی یا ویرت دیاں ساکھیاں چی پھس کے رہ جاندے ہیں، جنہاں دا اتہاس نال بھی کوئی مطلب نہیں، سچائی نال بھی کوئی مطلب نہیں، میں تے اتھے تک دیکھے اتنی نیوی لوکاں دی سروت، یہ کس طرح گرو نو سنن گے، یہ کس طرح گربانی نو سنن گے، یہ باونی
बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए। सच दी विचार फोकियां साखियां नहीं, और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा की, अकाल पुरख की। किस अकाल पुरख की? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। इत पहली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल, अगर रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने, तो एक जैसे ने कदे ही नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दे आवे भावे ना आवे, वह फर्क साडे तौल दे आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया, तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे, साड़ी समझ दे आ गए ने इतने। इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है, मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारिया ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं, ते अपनी जवानी हंडा चुके है, बुढ़ा हो गया। 40 लख टन वजन 1 सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं ही महापरले कहंदे ने।
एक ब्राह्मण दी परले, एक ब्राह्मण दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावे अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नू ना लईए, लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वक वक है, पर इस सारी अनेकता विच रमे आया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों हुआ है? धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेक तो उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने खेल, या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दिच जित होवे, जिस दिच हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दिच नफा होवे, जिस दिच नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक, मेरी दृष्टि वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, कहिंदे फलाना मुल्क हार गया, फलाना मुल्क जित गया, ये जंग है या कि खेल है? और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, सोगवार होके आंदे ने, रोंदे हुए आंदे ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जित जान, नचदे हुए आंदे ने, मुल्क दे उनां दा स्वागत आंदा है, उनां नू इनाम मिलदे ने, जैसे किसी मुल्क नू जित के आए ने, और वाकई नाम भी लिया जांदा है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनू मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं। जिस दिच जित है, जिस दिच हार है, जिस दिच हार दी घृणा होवे, जिस दिच हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस दिच जित दा तकब्बुर होवे, उनू खेल आखण दी की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दिच नुकसान दा दुख होवे, जिस दिच नफे दी खुशी होवे, उनू खेल आखण दी लोड़ की है? ये ते धंधा है। खेल बच्चे खेडदे ने, खेल परमात्मा खेलदा है। दरिया दे कंडे ते, सागर दे तट ते बच्चे खेल पे खेडदे ने, रेत दे महल खड़े कर रहे ने, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलां विच रहना है जो इतनी मेहनत नाल पे बनांदे ने, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने। महल बन गए ने, इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर दी याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े कीते सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जद बनाण लगे सन खुश, हसदियां हसदियां, अज मिटाण लगे ने खुश, हसदियां हसदियां। खेल है, धंधा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी, आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद के नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं,
खेल तमाशा सुंदरता क्रूपता दे बदल जाती है, हासे रोणिया दे बदल जाते हैं, फूल खिलता है मुरझाने का तहैयल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। आसिया दे थले परेशानियां छुपिया पई ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थले मरण छुपया पे है। खेल तमाशा बनाण लगे हाँ प्रसन्नता है, परमात्मा नो बिठाण लगे भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जांदा है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जांदा है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नु संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलन लगदा है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। इस अनेकता विच जिहड़ा एक नु वेख लवे, एक नु समझ लवे, ओ पवित्र है। उसनु किसी नाल घिरना नहीं होवेगी, किसी मुल्क नाल, किसी जात नाल, किसी व्यक्ति नाल, किसी कौम नाल, किसी धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नु वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वजेगी, मंदिर नु वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलो लंघे आई, उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां, भेद ते मिट गए। उहनु दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है, अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वह एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरा अनेक है। जिसनू लहरा नाल नफरत है उन्हू सागर नाल भी नफरत है, जिन्हू किरणा नाल नफरत है उन्हू सूरज नाल भी नफरत है, जिन्हू अनेकता नाल नफरत है उन्हू एक नाल भी किरणा है। उन्हू एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ठेरी। भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नो, सिर्फ पढ़िया ही नहीं मन दे च वसाया एक नो, तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैन मोह एक, एक दोए ठाए न जाने। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नो, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां च एक प्रगट आउंदा है, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे, उसके व्यवहार तो, उसके बोलन तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्ज जिंदगी तो, और किस तरह हो सकता है गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर दे रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उसके आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास थोड़ी रसना ते इक, थोड़े नेत्रां दे चिक, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसी एक तो बिना दूजे नू नहीं जानदे, थानू एक ही एक दिखाई देंदा। सारियां किरणां दे इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है, थानू सारी लहरां दे इक्को ही सागर दिखाई देंदा है, थानू सारी अनेकता दे एक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने, सुपन एक पर तख एक, इक्कस में लीने हो। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहिंदे हो, एक दे च लीन रहिंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो थानू सुपने भी एक दे ही आउंदे।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤਖ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਸਮੇ ਲੀਣਿਓ ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈ ਤੀਸ ਨੇ ਖੇਣਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈ ਤੀਸ ਨੇ ਖੇਣਿਓ, ਤੀਸ ਇੱਕ ਇਕੱਤੀ

0: पढ़ते हो और एक नो मन देख वसाया थोड़ी जागृत अवस्था दे चिक थोड़ी स्वपन अवस्था दे चिक तुसी इस गल नू समझ ले है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना बन। एक नू कोई समझ जाए एक नाल कोई जुड़ जाए वो ही पवित्र है बाकी कोई पवित्र नहीं क्योंकि उन्हों सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा उन्हों सारिया किरणा दे सूरज दिखाई देगा उन्हों सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा उन्हों सारे पशु पक्षियों दे ईश्वर दिखाई देगा जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। ए अवस्था जिसकी बन जाए ओही पावन है ओही पवित्र है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है। अनेकता तेरा खेल है अनेकता तेरा तमाशा है ते बस मैं यही तमाशा देखन लई आया। मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी का कहना है जो हंस रहा है सो हंस रहेगा जो रो रहा है सो रो रहेगा सकूने कलब से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। उसका तमाशा है इतने होवेगा तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसी अनेकता दे जिसनु एक दी समझ होवे एक दिसे एक रसना ते आ जाए एक हिरदे च बस जाए वो ते पावन है वो ते पवित्र है बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्तु बूझे ता होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक एक तो गुरबाणी आरंभ होती है सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है। जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी ओही भगत ओही संत ओही फकीर ओही वली अल्लाह ओही अवतार ओही महापुरुष और ओही पावन ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस छंद की विचार सरवण करदे आ आप नूं इक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नूं जह सरवण कीता। कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन। गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुन वास्ते सुनदे रहो रेडियो 1550 AM। संत मस्कीन जी भाई पिंदरपाल जी भाई ठाकुर सिंह अते कई होर ज्ञानी ते महाकवियां दियां कथावां सुनन वास्ते ट्यून इन करो 1550 AM रेडियो स्टेशन।
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Bod of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Bod, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBodGroup.com.

0: गणे बैदन पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ही जन्म ते मरण का मूल है ते जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान होमे एहा जात है होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर जौने पाए। होमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक्त चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी देखते हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गह कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वपन दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जोबन की मस्ती रिच, धन की मस्ती रिच और सता की मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन की सोचनी रिच होवे, जोबनवंत होवे या जोबन की चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल देख खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का निया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसमें एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहो कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन, हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ली फिर दी। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन इक ना नाद ना बेद। इकद नूं न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो न लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने। अहंकार भी पंड चुकी फिर देने, पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार तो गुणा ते ही खड़ा होंदा, और अहंकारी दिया अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाह मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा। अहंकारी चाहता है सारे दिन निगाह मेरे ते आउन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेडे। तू है जी हड्डियां हड्डियां दे ते चढ़े होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां दा मान जोबन जवानी दा मान हड्डियां दा मान मांस दा मान मिंज दा मान और खलड़ी दा मान इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने करपूर बहुत सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया फुलना जैसिया पवित्र वस्तुआ मनुखी तन नाल छूंदे हां स्पर्श करदे हां मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो है कि दुर्गंध खून मिंड मांस खलड़ी अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है जो बंदा अहंकार करता है। फिर धन का अहंकार धनवंता हो क्या को गर्वे जा सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होंगे है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन और तन उस दी देन है ए दिमाग उस दी देन है और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता इसका अहंकार अगह चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार ज्ञान दा अहंकार सेवा दा अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है बनाई जांदा है बनाई जांदा है बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है क्योंकि जगत तो जस मिलता है जगत तो मान मिलता है वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया हूँ त्याग दा अहंकार। सता कोल है सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है हूँ त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है पहले जो कोल है उसका अहंकार फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है उस त्याग का अहंकार अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी भगवान आके बैठे निरंकार आके बैठे अहंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाथ कृष्ण ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा, कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा मान मैं हो जावां, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, तू है, तू है, तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना देता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां, मैं हां, मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिसदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, कि तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां, मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं, मैं, मैं। पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उथे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चुनार, कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनू तेरा जी करे, तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए, और नमाज पढ़ने मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे भी तो लोग प्रधानगी लभदे ने, कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा देच भी जो है ठा ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे ते ही होंदे हैं। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ना, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी
शर्मसार होकर रहे।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनदा है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होए, कुछ बिगड़ना भी ना होए, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतने ही जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाली वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना, हां कहना ही भुल गया। हां कहने विच इन्हू अपना छोटापन प्रतीत आंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीर्णे। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसे दुश्मनी बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते हैं

शरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जितों खुदा दा मिलाप चाहना है, जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सूल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आप

की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नो उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नो, जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी तो बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी धन दसती है एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नु सज्जन बना लेंदा है कि एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है, जीवन धन हो जाता है। कहने मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहने गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया है, दुष्टां नू भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन की ना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है, एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है, कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या, साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहन लगा आखिर मैं खालियत किस तरह जो है आपदे दर्शन करा, ये नजराना है ये भेट है, चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु
आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है भी इत्थे कल्लियां बैठे हां तुसीं तंग हो जाओगे आओ मेरे नाल चलो मैं तीन घरां विच जाना है तुसीं मेरे नाल चलो फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वह जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे के चले हाँ तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवे कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारिया की निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारिया दियां निगाहां मेरे ते अज ये निगाहां फिर गई ने अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है इतने मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनों पे वेखदे ने खैर जिस घर विच जाना गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनों वेख रहे ने सोना चोला पहने होया मुखड़े ते शांति झलकदी है निर्माणता बिखरदी है रहस बिस्मात अखां दे विच है तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुख तो के कहिंदा है मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दा है। खैर माफी मंगण लग पया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले भी निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे की शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वालिया ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या करने ने ज्ञानी ने
रह गई इस चोले दी गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे ची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवांग पूछ रहे है, संत जी ये नाम कौन आए ने, ये केड़े संत ने, तो हुण तारुफ करांदा है मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी मैं इस दी गल नहीं करने, ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी, ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? ते मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटण दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नूं भी नहीं मन सकदा, अहंकार जींदा है मैं आश्रित तों ते बिल्कुल भुल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नूं अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं, इसे नूं आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है। फखर

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वज देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। आंद्रा रह गईया सुट दतिया गईया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईया कम विच वर्तिया, केवल आंद्रा बच गईया। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी रिदरी तंग लाई जाती है वो बकरे दी आंत आंदी है, अंदर आंदी है।
0: ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए,
1: ये आंदरे ही रह गई सुन।

सदा फुसे धुन की बनाने के लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते हो, नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रूई पिंजी जांदी है। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुन उस आंत बेचो सोटे की जरब नाल निकल रहा है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। खुद इतनी कुर्बानी करे, साधना करे कि साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक ते अपने मस्तक नूं रगड़े, श्वास श्वास वाहिगुरू वाहिगुरू जपे, ताई ये मैं तुम विच बदल दिए, जीवन धन धन हो जांदा है, महान हो जांदा है। अहंकारी उस तक अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उसे प्रसन्न होता है, अपनी उपमा सुन के उपमा होने लग पी है दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा का मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसी गल विच उस नालों अगे होवे, गुण विच, कला विच, ज्ञान विच, शील संजम विच, या फिर प्रभु की बंदगी विच, या संसारी तल ते लै लो सता विच, धन विच, स्वप्न विच, किसी भी पक्ष तो जो अगे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता, अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हें भी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हें भी सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है, मारिया मारिया कढ़िया है। ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले ते मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अहंकारियां निंदकां पिछ गए, नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणां दी सिफत तो सलाह करदा है उसकी परमात्मा दी सिफत तो सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणां दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर उह ते निंदा करदा है, गुणां दी निंदा करदा है, क्योंकि अहंकारी है। तो परमात्मा की पिट हो जाती उसकी तरफ, और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिट हो गई है सब की पिट हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते हैं,
आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे। ऐ अहंकार तेरे करके ते जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कहीं नू ब्रह्म।

परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहिब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिव ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्च

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खदियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थो तक के जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिकड़ विच खिड़े हुए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहनिया उदाहरणा कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लतां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू चुका के अपनी पिट ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल हूण सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल होण सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूंह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणो मां ते पुत्र दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटा बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नूं कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउणी। वैसे तां जे इंसान नूं समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याक है मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा है बिन प्यार मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल कीती हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए कहिंदे ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ए मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करे परमात्मा दी बंदगी करे जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है
जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत एवे असी कहां के मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पए। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उथे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकियावां। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां। उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई। कैसी भगती की थी? केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਵੇ ਸ਼ਿਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਇਸ ਮੈਲੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੱਡ ਪਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਭਵਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ,
रे मन का अर्थ है अपने मन नू संबोधन किया, अपने मन नू मुखातब किया। कह लगे रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल कमले, जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है, लहरी नाल पछाड़िया जे लहरा ओनू उठ के पछाड़ दिया ने धक्के मार दिया ने, पी विगसै असने ओ लहरा दिया ठोकरां विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरां विचों भी प्रेम दिया पिंगा झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत की जिमें कमल दा फुल ठोकरां सहार के भी प्रीत पिया करदा सी। जे किसी ने वट्टा चुकिया, जे किसी ने दीवाना किया, जे किसी ने मस्ताना किया, जे किसी ने पागल किया, सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए, प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिमें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वाद होवे उन्ना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मच्छी विच उदासीनता ते तड़ पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी करदा है त्यों त्यों खेड़े विच आउंदा है, ते जदों किते तोटा आ जाए सच जानो वह मच्छी दी तरह लुड़चन लग पैंदा है, तड़फन लग पैंदा है। ते बाबा जी ने कहा रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर कैसी, कहन लगे जैसी मछली नीर, जिमें मच्छी पानी नू प्रीत भी कर दी है, ज्यों अद कहो तो सुख घना, जितना पानी ज्यादा होवे मच्छी ओनी प्रसन्न है। कहन लगे ज्यों अद कहो तो सुख घना, मन तन शांत शरीर, ओदे तन नू ओदे मन नू खेड़ा, क्योंकि मच्छी पानी विच रह के आप दी आनंद विच है। ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है, मच्छी पानी तो बिना किसे नाल समझौता नहीं करदी। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर नानक नाम निरंजन जान्यो इस तरह। कहन लगे रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर जैसी चातरक में, जिमें एक पपिया स्वांती बूंद नू प्यार प्या करदा है, जिमें एक चातरक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है, ओदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने पर कदी ओ सरोवर दा पानी नहीं पिएगा, तालाब पानी दे भरे ने पर चातरक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा, दरिया पानी दे भर के वगदे ने पर कदी भी ओ इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वक्रे वक्रे तालाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा, ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चातरक स्वांती बूंद नू प्यार करदा है ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है, सच जानो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहीदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण इहदे नाल होर अर्ज करना चाहना। चातरक कदी भी समझौता नहीं करदा स्वांती बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नू पुछया दाता जी प्रेमा भगती की है, उन्होंने एक प्रमाण दिता ओहा प्रेम पिरी प्रेमा भगत की है। ओहा प्रेम पिरी कहन लगे कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। प्रेमा भगती एक है कि जे कोई प्यारे दे सामने लिया के हीरियां दे ढेर ला के कह तू बंदगी छड़ दे, गुरु नू छड़ दे, कीमती हीरे चुक ले। जे कोई ओदे सामने कीमती मोती लिया के कह मोतियां नाल झोलियां भर लै पर नाम दे मोती नू छड़ दे। जे कोई ओदे सामने कीमती गज ए भी मोती कह सामने लिया के रखे तू परमात्मा दी इबादत छड़ दे। साहब कहिंदे ने जिहड़े प्रेमा भगती करन वाले ने ओ कह रहे ने ओहा प्रेम प्री कनक मन गज मोतियां लालन नह नह नहीं। जे कोई कह चल हीरे मोती छड़ तेनू आ तख्त दे देने,
तेनू आ दुनिया का हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने हैं। अगो उत्तर मिलता है, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई, ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नै ना नहीं। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंधन सुखो सुख पाही। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती, मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती। ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच क्या, रे मन ऐसी खरशो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले। पर प्रेमा भगती करने वाला बूंद नू एक बूंद ना पवही, के जितने मर्जी पानी दे भंडार होन पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांती बूंद ही बुझाए। साहब ने पहला प्रमाण कमल फूल दा दिता, दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता, तीसरा प्रमाण सच्चे पातशाह ने मेर कीती चात्रक दा दिता, ते चौथा प्रमाण दिता प्रेमा भगती है कि प्रेमा भगती कीती। ते गुरु नानक साहब दे अमृत बचन असि पढ़ने, प्यारो प्रेमा भगती है कि अपनी ता एक जबान भी टेक के गुरु गुरु नहीं जपदी। जे किते टिकन दा यतन करिए पांच सात मिनटा भी थक जांदी है। टेक के बंदे तो रब रब क्या ही नहीं जांदा। सारा दिन आदमी तो गल्लां करानियां होण, निंदिया करनी होवे। मैं कई बारी अर्ज करना, बंदा बीमार होवे ना, हमदर्दी प्रगट करन जाइए ते ओ बड़ा ऐसता ऐसता बोलेगा, घर दे भी कहणगे बुलायो ना, डॉक्टर साहब ने रोकिया है वरजिया है इना बोलना नहीं। आम गल्लां करदियां ऐसता ऐसता बोलेगा, किते थोड़ा जिहा निंदिया दी कोई तवा लगण दा देर है, सच जाणियो पता नहीं कित्थों आवाज निकलदी, ओही बंदा उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदा है। की कदी साडी जबान परमात्मा नहीं इन्ना उच्चा बोलदी है? रसना संसार लई कूकेगी, रब लई कदी नहीं कूकदी। हां जिदी कूकन लग पै प्रेमा भगती विच, बाबा नानक जी कहिंदे ने फिर ओदी एक जबान ही केवल नहीं कूकदी, सिर तो पैरां तक जितने ओदे रोम ने हर रोम ही जबान बन के कूकन लग पैंदा। एवे प्रेमा भगती। बाबा जी ने अमृत बाणी विच एक बचन कहा, हे जे वेह गुरु अर्जुन साहब श्लोक संस्कृति, हे रस गए मधुर प्रै तोयंग, हे जबान हे रसा नू चखण वालिए, तेनू गल्लां चंगियां लगदियां ने, तेनू भोजन प्रसाद पानी चंगे लगदे ने। हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, जदों किते सत नाम वाहगुरु दी गल चले इंज लगदा जिवें तेरी मौत हो गई है, तू मुंह च है ही नहीं, अंज लगदा जिवें तेरी अंदर दी ताकत ही खत्म हो गई। हे जेवे हे रस गे मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, सत विच तेरी मौत हो गई। परम बादंग, जे परम बादर ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा खड़ा करना होवे ते जबान तीली नूं तां कसाणा पैंदा है, तां ओह अग लांदी ए, सिर्फ तू तां अपनी एक निक्की जी तीसी खलाण दी दे रे ते कई पुश्तां दे आपस विच पवाड़े पा के रख देनी है। ध्यान दिया जे, जे जबान दी शक्ति, जे रसना दी ताकत, जे जेवां दी ताकत एक थोड़ी जी तीसी हलाए ते कई जन्मां दे पवाड़े कई पुश्तां दी आपस विच कतलो गारत तक गल पहुंच जांदी ए। जे जबान इन्नी वड्डी दूरी भी पा सकदी ए, चेते रखियो इहदे कोल शक्ति ए, जे रब रब जपन लग पए ते करोड़ां जन्मां दी दूरी मिटा भी सकदी है। कली दूरी पांदी नहीं, यह दूरी मिटा भी सकती है। हजूर ने बाणी विच मेहर कीती, जदों उन्हां ने प्रेमा भगती भी जुड़े ते बाबा नानक जी नूं जे कोई पुछदा है कि सतगुरु जी परमात्मा नूं पाउण दा मार्ग की है, ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह मार्ग है इक दू जीबो लख हो है किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, इन्नी भगती कीती एक जबान तो लख जीब हो गई, लख दीब तो भी लख हो गई, ते उस भी लख जीव विचों एक एक जीव नाल लख लख वरी जगत दे मालक दा नाम जपिया
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਆਕੀਸ, ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਠੀਸ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੀ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੂੜੀ ਗੱਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੂੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚੋਂਦਾ, ਗਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਗਾਲ ਦਰਦ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਦਾ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਤੇਲ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਮੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਕਦੀ ਘਿਓ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ 6 ਕਿਲੋ, 6 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਦੇਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਵਾਂ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਛੇਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਕੈਸੀ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੀਂਵ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਐ, ਖਰਚੈ ਦਿੱਤ ਕਸਮ ਦੀ, ਕਸਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਕਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਬਟੀਐ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਖਰਚੇ, ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਖੈਦੀ ਆਪ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਖੈਰ ਖੈਰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚੱਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਐ, ਖਰਚੈ ਦਿੱਤ ਕਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਬਟੀਐ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਨੂਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਰਿਆ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਹੁਣ ਬਰਿਆ ਵਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਰਿਆ ਬਰਿਆ ਦਰ ਤੇ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਰਖਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਸ ਹੋਵਾ ਪਾਰਸੋਂ, ਗੁਰਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਪਰਚੇ, ਗੁਰਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

0: बैठे हैं, कह लगे झूठ वाला भूत निकल गया है, हुण अंदर गुरु बैठे ते गुरु नू अंदर दे चौंके विच बिठा के सच्चा भोजनी देईदा। अंदर गुरु है, हुण ओ गुरु अंगद साहिब सरोज समुंदर बन गए, जेड़ा उन्हां कोल आया उन्हां बरखा कीती। ताते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। हुण तीजे पातशाह ने गुर अमरदास की अकत कथा है, गुरु अमरदास जी दी पट कीर्त जी कितने कथा बयान तो रहत है, वो अकत कथा है। गुरु अमरदास की अकत कथा है, ते किवें का अकत है जी? उन्हां नाल बचन क्या एक जी ही साडी जीव एक है, कछ कही ना जाई। की बयान करांगे, गुरु अंगद साहिब दी कथा अकत है, असी नहीं बयान कर सकते, क्योंकि पट पिछे भी कह के आए ने के दाता जी कन कर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणन।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: उस वेले कोर्ट कचहरियां खाली होने लग पे सी, कोई थाने च नहीं सी जांदा। संत जेड़े कन्या कन्या सालां दे फैसले सी अपने दरबार च हल करिया करदे सी, किसे दी जुरत नहीं सी कि उन्हां दे कोई फैसले नूं अलग कर दे। दिल्ली दी सरकार तलमला उठी, ओ इंदिरा ने आख्या ओ पिंडरा वाला जेड़े अपने हकां दी गल करदा, भावे इन्हां दे गुरुद्वारे ढोने पैण, भावे इन्हां नूं झूठे मुकाबले बना के मारना पवे, इन्हां नूं एहो जिहा सबक सिखाओ, एहो जिहा इन्हां दा लक तोड़ो कि मुड़ के अपने हकां दी गल ना करन। 6 लाख फौज चढ़ के दिल्ली तो आई, 6 लाख फौज, 1,33,000 फौज श्री हरिमंदर साहब ते अकाल तख्त ते हमला बोलू रखी गई उन्हू कब्जे च करन वास्ते, 2 लाख फौज अमृतसर तो 25 किलोमीटर दे घेरे विच लाई गई, बाकी फौज सारे पंजाब दे विच इनू शौनी दा रूप दिता गया। बारलियां स्टेटां दे नालों एदे सारे संबंध तोड़ दिते गए, कोई पंजाब विच गड्डी लै के आ जा नहीं सकदा, सारे बार्डर सील कीते गए। इधर ओ कुलदीप बराड़ जेड़ा चढ़ के आया सी हमला बोलन वास्ते संतां नूं फड़न वास्ते।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी, दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए, हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन, केड़ी दवाई देंदा है। आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै, जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी, ना तां मैनू इस संसार दे ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਤੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: राष्ट्रपति
1: दे प्रसाद छति ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: दे प्रसाद सुगंध तन लावहे
0: जिसको समृत परमगत पावे
1: दे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: चाहते आये सदा मन अंदर
1: दे प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरोत सरसना
1: दे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदाते आये ते हमन जोग
1: दे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: त्याकत अवर लुभावे
1: दे प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस का विजय
1: दे प्रसाद तुल सब पू मान
0: मुक्ता को जस रसन बखाना
1: दे प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जपत दरगाह मान पावहे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: दे प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला वत सराम स्नेही
1: दे प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: दे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: दे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन सास सास मरो प्रभु उच्चे
1: दे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: दे प्रसाद अभूखन पहरी जय
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
1: दे प्रसाद असवर सवारी
0: मन तिस प्रभु कभु न बिसारी
1: दे प्रसाद बाग मिलख तना
0: राख प्रय प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सहत्याई
1: इसे ध्याय जो एक लख है
0: यहाँ उहा नानक तेरी रख
1: दे प्रसाद करे कौन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: दे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु को सास सास तारी
1: दे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: दे प्रसाद तेरी नीकी जात
0: प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: दे प्रसाद तेरी पत रह
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: दे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
0: दे प्रसाद पेख विस्माद
1: दे प्रसाद बोले अमृत रसना
0: दे प्रसाद सुख सजे बसना
1: दे प्रसाद हस्त कर चल है
0: दे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: दे प्रसाद परम गत पावहे
0: दे प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: दे प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: दे प्रसाद तेरा प्रताप
0: दे मन मूढ़ तू ताको जाप
1: दे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: ऐसा जान मन सदा हजूरे
1: दे प्रसाद तू पावे साच
0: दे मन मेरे तू तास्यो राज
1: दे प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाई जपे सोनाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विकास
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मतूतन होए
1: सर्वन धन प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हू लया
1: जब जत लाभ होते त लगे हैं हर नाथ
0: नानक हिन के कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा राष्ट्रपति
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग मन सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत नबेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा परने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे सम्मानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथूं पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस सोनी बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग ना ही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग ना ही हों ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कब हूं पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह
0: साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बस है थान ऊंचे
0: साधु के संग महर पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग शोभा सुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्प थान गम
0: नानक साध का संग सकल जनम
1: साध का संग नहीं कष काल
0: दर्शन भेट होत नहाल
1: साध का संग कुलूकत हर है
0: साध का संग नरक पर हर है
1: साध का संग इहा उहा सुहेला
0: साध संग विश्रत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक उदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग करकट जीठा
1: साध संग भई आज्ञाकारी
0: साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने हैं
0: जिता सुन तेता बखिया
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का ना ही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख
0: कस बिन कोए
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमले लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जिन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवाल
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी का कल सदायानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या ना ही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विख्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीव है
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितने न पाइये धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत रामदास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक रामदास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिख काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तन्ना
1: आपे कर्म करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परक ਅਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਇ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਪਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵਹੇ
0: ਨਾਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਇ ਅਭਿਮਾਨੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋਤੇ ਤਿਤ ਲਗਨਾ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀ ਸੂਰ ਨਖਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਿਰ ਛਤਰ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਤਕ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤੇ ਅਰਸ਼ਾਸਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾ
1: ਸਾਥੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰ ਹੈ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ
1: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਵੈ ਰਾਗੀ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ
0: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
0: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
1: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ
0: ਕਈ ਜੁਗ ਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ
0: ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ
0: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ
0: ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵ ਹੈ
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ
0: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ
0: ਨਾਨਕ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਜਲ ਤਲ ਮਈਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਪ ਉਤਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀ ਕਿਸ ਵਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨੋ ਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਕਿਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ
0: ਆਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਸਹਾਤ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਉਬਕ ਆਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਪੀਠ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਦੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹਿ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तृण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में होए जाए पसमंत
1: सेना बदा आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: सर भलाई निकट में आवे
1: सर की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लब को उठतावे
0: रतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करना हार
0: इसके हाथ कहां भी
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रम सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिन सह आवे न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप तीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पिन कहो किश होए
0: अंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नैवखयानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनुरूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुनी सर उन बखयानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जप नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक कन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान फरमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिललाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: भया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्याहु सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई
0: ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨੁਕ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਬੇਖਾ ਪੁਰਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

पौड़ी बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेबेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिल्कुल ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए बड़ी पड़े होवे गुनगा साधन मारिए।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का पूरा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पुठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव भगत कर नीच।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न तुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न तुट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की बे तग आया पे बते।

ओडिशा में दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन भावदे हर बुजर नाही हारिया कर फरमाइश खाया वे

सुचे अगे रखियो कोई ना पिटो जाए सुचा है के जे ब्या लगा पंछ लोक को हथी जाए सटिया किसे लगा दोख अण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरत तो हो पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पिया तित जित मुगनाम न उचरे।

पौरी अपि करणा की कलप हित धारिय देख किता अपना तर्क चिप की सारिय जो आ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: Har patapan jap japan hai. अकलंक रहते हैं सर्वाक रहते हैं करता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुजांग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो

रूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी तरकाले त्रिपंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अज अल अप अब अपू अजू अनास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख अनाम काम गहट नाथ परमाथ अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब अग्नि में हरियं करियं करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पवसुभं सर्वदा।

पाते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरे आर अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न आर सो बात नहीं चाक चार लवैया। साहिब साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फनेंद ने साचर भूत भवेख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पाली पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे। साध समूह पर

अल मन खाई सिर छाई पाई मूर कंधे पत गवाई विन नावे किस थाए न पाई रहे बिबाणी मरी मसानी अंदर।

किसी भी अवतारी पुरुष नू समझना होवे, विद्वान कहने ने पहलू तीन होंदे ने। प्रथम उस दे बोल की ने, जगत दे प्रति उसका संदेश उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उस दे कर्म की ने। तीसरा उस दे बोला नाल उदे कीते होए नाल होया की है, अंजाम की होया है। किसी भी अवतारी पुरुष नु वेखने पहलू तीन ने, तीन उदे बोल की ने। स्याणे ऐसा कहने 90% मनुख अपने बोलना राही प्रगट होंदा है, 10% उदी बाकी क्रियावां तो अंदाजा लाना पैंदा है। वेखदिया कुछ भी नहीं पता चलता है मनुख की है। किसी नु भी वेखना, वेखण नाल किसी भी मनुख दे प्रति मनुख कोई अंदाजा नहीं ला सकता। ये मूर्ख है, स्याणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, दूरदृष्ट है या जल्दबाज है, वेख के नहीं पता चलता। मनुख दे बोल सब कुछ दस देंदे ने। मनुख दी गुफ्तगु तर्जे बयानी 5-10 दिन उसकी संगत करी उसके बोलां दे च, मनुख दा सारे दा सारा आपा प्रगट हो जांदा है। इनू ईरानी सूफी संत सादी इंज कहंदे ने, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। जितने चिर तक मनुख बोले ना उदे गुण औगणा दा पता नहीं चलदा। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। बोलदे ही पता चलदा बंदा धार्मिक है, ये अधार्मिक है, शांतमयी है, क्रोधी है, ये जल्दबाज है, ये धीरजवान है, ये दूरदृष्ट है, ये तंग नजर है, ये निर्वैर जज्बा रखता है, ये बड़ी भारी दुश्मनी रखता है उदे बोल दसन। ये फराग दिल है, ये तंग दिल है। मनुख दा सारे दा सारा जड़ा सुभाव है, 90% उदे बोलां राही प्रगट होंदा है। भारत विच एक ज्ञान दा बहुत वड्डा ग्रंथ है, उनू सार किताबली कहंदे ने। गालबन कोई 4-4.5 हजार साल पुराना लिखिया है, उदा हिंदी रूपांतरित है। बोलत ही पहचानी है, साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे बुख की बाट। 5-10 दिन बंदे की संगत करिए गुफ्तगू देच, उसका अंतशकरण सारे दा सारा बार आ जाता है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा वाक, हमो मर्द बायत शवत सुखनवर, नशिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मनुख दी महानता उसके सुखन तो पता चलती है। मनुख दा तुच्छपना, उदी मूर्खता, उदा क्रोध, उदी ईरखता, उदी तंग दिली उदे बोलां तो प्रगट होवेगी। 10% क्रिया तो प्रगट होंदी है, 90% मनुख दा सुभाव उदे बोलां विच प्रगट होंदा। बोलत ही पहचानी है, साध असाध को थाट, अंतर की करनी सवे निकसे मुख की बाट। तो विद्वान किसी भी अवतारी पुरुष नो नापण तोलन लगया देखदे ने उदे बोल की ने। संसार दे प्रति उसका संदेश ते उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उदी क्रिया की है। तीसरा उदे बोलां नाल उदी क्रिया नाल

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है, और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने, और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है, और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है। चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हां नहीं आंदा, और उस तो विपरीत हो जांदा है, तो मन सोग नाल भर जांदा है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है, क्योंकि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है, ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जांदे ने। कबीर कहंदे ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है, पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वत्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो, ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना स्याणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वद्दी है सोग भी वद्दा है। सोग देच होके होंदे ने, सोग देच पछतावे होंदे ने, सोग देच साड़े होंदे ने, सोग देच जलन होंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस दे च मनुख दी सोचण शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन दे च रोग होवन, मन दे च सोग होवन, तो ऐसे पुरुष नूं किसे होर नरक दे च जाण दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है, ये नरक दे च जी रहे है। नरकी क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक दे जी रहे है। तन दे च रोग ने, मन दे च सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। अज तक मानसिक सोग नू दूर करन वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नू मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों, मन चंचल है।
चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है चाहे रूप है, तमाशा है खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी होई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफिलां विच नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग देच ही जीना

आसा नाम सरी, मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी, व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दितलते हैं। क्यों? ख्वाहिश है, आसावा इसके अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसकी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ये इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर का हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नु सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है, ते जे ना पूरी होवे तां वी एक रेखा छोड़ जांदी है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहिंदियां ने जिवें नदी बह रही है। बावे नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है, जो पी लिया पानी ओही हिस्सा बने है, बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी, मनोराज नीर भरी। इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है? संकल्प। जिस जिस इच्छा नु पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओ उस नदी दा जल बन जांदा है, ओ उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी, मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी। इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो त्रंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ये नदी गहरी कितनी है, इदा पाठ कितना गहरा है, ये चौड़ी कितनी है, ये गहरी कितनी है, तो ये राजयोगी, ये महान संत, मन दियां गहराइयां नु समझण वाला ये महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई, कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने, व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनु उल्टा के कह दो, ये बेचैन क्यों है? तृष्णालु है। ये तृष्णालु क्यों है? इहदे अंदर संकल्प ने। संकल्प क्यों ने? इहदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहुंदा है। आसा नाम सरी, मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी, व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है, कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां होईयां नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ये किन्नी मील लंबी है, इहदा पाट किन्ना चौड़ा है, ये गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन विच वग रही है,

0: ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर देता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने, और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं हुईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकदे या दावे नाल नहीं कह सकदे कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुईयां होन ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी, इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे पक्की जिंदगी किसनों मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी
1: ना।